ठीक है, जैसे कि सर ने विश्वास दिया हम किया I thought for some of the time that I'm